आवाज की दुनिया के संगीत प्रेमी दोस्तों, आज 6 सितंबर के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसे ही महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए गुलजार साहब के लिखे हुए कुछ गीत। गुलजार साहब जो इतने अच्छे गीतकार हैं कि उनको कहते हैं कि इनके गीत गीत नहीं बल्कि लिटरेचर है। हम श्रद्धांजलि देंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे, और हम श्रद्धांजलि देंगे अमृता प्रीतम जी को जिन्होंने पंजाबी लिटरेचर को ऐसी ऊंचाइयों पर लाके खड़ा कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आपकी फरमाइश पेश करेंगे और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, नंबर है 02981622777 02981622777। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.rr.org.au पे, www.rr.org.au पे। अपने मोबाइल पर भी इसी तरह सुन सकते हैं या फिर एक मुफ्त ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हों सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। और ये ऐप है कम्युनिटी रेडियो प्लस, कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप अपने फेवरेट ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए और महक का आनंद लीजिए।

0: आप हमें ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं mahakradio@yahoo.com mahakradio@yahoo.com mahakradio mahakradio@yahoo.com। गुलजार साहब जिनका जन्म हुआ संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से 18 अगस्त 1934 को झेलम के डिस्ट्रिक्ट में, और अब उनके जन्म स्थान जो है वो है पाकिस्तान में। और आज हम उनकी कला जो कई रूप ले चुकी है फिल्मों में, वो गीतकार रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं फिल्म के, स्क्रीन राइटर रहे हैं कई फिल्मों के, प्रोड्यूसर रहे हैं कई फिल्मों के, कवि तो हैं ही वो फिल्मों की बाहर की दुनिया में, और लेखक भी हैं। और आज हमें उनकी फिल्मी दुनिया की जो सेवा है, जिसके लिए उन्होंने अनेकों गीत लिखे हैं, उसकी सेलिब्रेशन करेंगे महक 2RRR 88.5 FM पर।
1: मैंने

और कुलसार साहब ने जो गीत लिखे वो तो मशहूर हुए ही, उसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों के डायलॉग भी लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे और फिल्में डायरेक्ट भी की। और सबसे पहले उनका जो गाना मशहूर हुआ वो था फिल्म बंदिनी के लिए, जिसका संगीत दिया था एस डी बर्मन साहब ने। गाना था मोरा गोरा अंग लई ले और मुझे शाम रंग दे दे, बहुत ही मशहूर हुआ ये गाना। और फिर उन्होंने फिल्म आशीर्वाद के डायलॉग लिखे और गीत भी लिखे। और फिर उन्होंने 1969 में फिल्म खामोशी का गीत लिखा, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, अत्यंत ही पॉपुलर हुआ ये गाना। और डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने फिल्म मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, आंधी, खुशबू, मौसम जैसी फिल्में डायरेक्ट की, जिनके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया और फिल्म फेयर का बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया। और फिर उन्होंने एक टीवी सीरियल डायरेक्ट किया, टीवी सीरियल था मिर्ज़ा गालिब, जो अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर जो है टीवी सीरियल रहा। तो आइए उनकी एक और बहुत ही मशहूर कृति सुनते हैं, और फिल्म है बहुत ही प्यारी ये कृति है उनकी। और इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने अच्छे थे, लेकिन ये गाना शायद बाकियों से कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। फिल्म है आंधी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। लता जी, किशोर जी, आर डी बर्मन साहब।

जनसत्ता समाचार पत्र में समाचार आया 1 सितंबर को कि निशकेक जो किर्गिस्तान का एक शहर है वहां पर हो रही स्को मीटिंग SCO मीटिंग में भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर जोर दिया. कहा कि सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से भी मुलाकात की. 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स समिट हो रहा है और इस समिट की थीम होगी इस बार बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. और सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के 2 सितंबर में समाचार आया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कि न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस बीते सप्ताह 4 दिन की यात्रा पर भारत गए हैं. दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे में वो दर्शनों के लिए भी गए. अपनी मंशा पत्रकारों से साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैलानी सिडनी आए और चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट्स सिडनी के नए हवाई अड्डे जो आप जानते ही हैं वेस्टर्न सिडनी में लग रहा है सेंट मैरीज के पास वहां उतरें और रेयर अर्थ मिनरल्स आप जानते ही हैं बैटरी वगैरह में काम आती हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का एग्रीमेंट भी साइन किया उन्होंने भारत के साथ. तो न्यू साउथ वेल्स और भारत के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत इसकी खुशी है. तो आपने सुना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में. और अब पेश है आपके लिए तुझसे नाराज नहीं जिंदगी फिल्म है मासूम. और इसे सुनते हुए आप अपनी पसंद हम तक पहुंचा सकते हैं. बहुत ही आसान है फोन उठाइए नंबर घुमाइए 02981622777.

0: 2:22 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का भी और नंबर है 02981622777 02981622777 और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है महक MAHAK उसके आप सदस्य बनना चाहें तो भी नंबर यही है 02981622777 और इसका मेंबर बनके आप महक के बारे में और जानकारी पा सकते हैं और अपनी जानकारी और अपनी फरमाइश और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो पेश है आपके लिए हमारे संदेश।
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: Attention ride residents. 3am Ride Church is hosting a free community health check day on Sunday the 13th of September from 10am to 2pm at Ride Park near the cafe on Blaxland Road. Drop in for free blood pressure and BMI checks, health information and education, access to community resources and support, and even a relaxing massage. There'll be activities for kids, free giveaways, and health tips for the whole family. It's free, it's local, and it's all about looking after the ride community. That's Sunday the 13th of September, 10 till 2, at Ride Park.
4: Did this grab your attention?
5: Would you like your business to get this sort of attention?
4: It's as easy as sponsoring 2RRR. We offer inexpensive packages to get your message heard through the variety of our great programming. Also, you support us, a non-for-profit organisation that gives voice to the local community. For more information, email office@2RRR.org.au or you can give us a call 98162988. This is your local sound, 2RRR.
0: संदेशों के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज 6 सितंबर के इस कार्यक्रम में जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूं गुलजार साहब के लिखे हुए कुछ गीत डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 5th September 1888 डॉक्टर राधाकृष्णन एक स्कॉलर एक फिलोसोफर और एक स्टेट्समैन थे वो स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 से लेकर 1952 तक काफी लंबे समय तक यानी तकरीबन 16 साल अद्वैत वेदांत आप जानते ही होंगे वेदांत जो है हमारे वेदों का जो ज्ञान है उसमें एक शाखा है अद्वैत अद्वैत का मतलब है जिसमें दो नहीं एक ही होता है जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है उनका विश्वास अद्वैत वेदांत में था और उसका वो प्रचार भी करते थे हिंदू सोच के बारे में पश्चिमी देशों की गलत फहमियां बहुत सी उन्होंने दूर की भारत और पश्चिम के बीच पुल काम कायम करने वाले जाने जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन उनको सर की उपाधि दी गई 1931 में और उनको भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षकों को सबसे अधिक ज्ञान और सोच वाले व्यक्ति होना चाहिए 1962 में उनका जन्मदिन 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में घोषित किया गया और तब से टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है उनका जन्म हुआ एक साधारण तेलुगु परिवार में जब एक चचेरे भाई ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अपनी फिलॉसफी की किताबें उनको दी तो तय हो गया कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी फिलॉसफी पढ़ेंगे। 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में उन्होंने मास्टर्स डिग्री पास की। वो स्वामी विवेकानंद के बहुत प्रशंसक थे और उनसे बहुत प्रेरित थे। हिंदू धर्म और अद्वैत वेदांत में दिलचस्पी का शायद यही कारण था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी यही विश्वास रखते थे। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में नौकरी शुरू की उन्होंने। 1918 में प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी नियुक्त हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। पहली किताब उन्होंने लिखी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1920 में दूसरी किताब लिखी द रेन यानी रूल ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। 1929 में हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज इंग्लैंड के प्रिंसिपल नियुक्त हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। कंपैरेटिव रिलीजन पर लेक्चर देने का मौका भी मिला उन्हें तभी। 1931 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1947 में आज़ादी के बाद उन्होंने इस सर की उपाधि को अपने नाम से हटा दिया। 1931 से 1936 तक आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1936 में स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 1939 पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बने 1948 तक, यानी 9 साल तक। आज़ादी के बाद यूनेस्को में भारत की नुमाइंदगी की 1952 तक। सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर रहे 1949 से 1952 तक, यानी उन्होंने कभी एक मिनट भी खाली बैठ के नहीं देखा। 1952 से 1962 तक भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे। 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे प्रेसिडेंट रहे। जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मुझे बहुत गर्व होगा अगर मेरा जन्मदिन मनाने की जगह उसे टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अंतर्ज्ञान इंट्यूशन का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और इससे इंसान को जानने का अनुभव मिलता है, मानसिक अनुभव मिलता है, सौंदर्य कला अनुभव मिलता है, नैतिक अनुभव मिलता है, धार्मिक अनुभव मिलता है और इन सब में इंट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तब सीखना बंद कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तब हम सीखना बंद कर देते हैं। बहुत ही बड़ी सोच है, इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें और जानना है, और जानना है। साहित्य के प्रतिभाशाली लोग सब जैसे दिखते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं दिखता है। तो ये थी कुछ बातें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। आइए चलें वापस गुलजार साहब के गानों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक गीत लिखा था, मेरा कुछ सामान, जिसमें आवाज़ दी थी आशा भोसले जी ने और फिल्म थी इजाज़त। और ये अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसमें जीवन के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो वही कह सकता है जिसको कि जीवन जो है उसने बड़े नज़दीक से देखा हो और बड़ी अच्छी तरह से जिया हो, जैसे कि गुलजार साहब ने। और इस गाने से पहले गुलजार साहब भी कुछ बातें कह रहे हैं।
6: किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए, पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। रूठ गए, नाराज हो गए, हार हाथ से अंगूठी उतारी वापस कर दी बाहों के कंगन उतारे और सात फेरों समेत लौटा दिए लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा

आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। सिडनी में एक कार्यक्रम हो रहा है सामूहिक विशेष पूजा, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये गणेश उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए भी है और ये हो रहा है 15 सितंबर को और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और इसके स्पोर्ट्स उनका कहना है ऑर्गेनाइजर्स का फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लिमिटेड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है इस कार्यक्रम के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर आप फोन कर सकते हैं दीप्ति को 030 और 374 5324। तो आप दीप्ति को फोन कर सकते हैं 0430 374 5524 पर, और अगर और जानकारी चाहें तो आप यहाँ कार्यक्रम के समय 02-9816-2777 पे फोन कर सकते हैं। और आइए चलें अगले गुलजार साहब के इस कार्यक्रम के में अगले गाने की ओर, और ये गाना जो है ये है हेमा मालिनी जी की एक बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी और ये फिल्म थी किनारा, और फिल्म किनारा का ये गाना भी अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था और इसको पसंद किया है माही ने। इसे सुनते हुए 02-9816-2777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में। और आज फादर्स डे है, फादर्स डे की सभी पिताओं को फादर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है आपके परिवार में खूब धूमधाम से आपने मनाया होगा फादर्स डे और आपको खूब सारे गिफ्ट्स भी मिले होंगे। तो हैप्पी फादर्स डे सभी पिताओं को, सभी फादर्स को।

0: जनसत्ता समाचार पत्र में 1 सितंबर के समाचार में आया कि उत्तर प्रदेश के कौशंबी में एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 2 बच्चे भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की। पुलिस स्टेशन पिपरी के थाना इंचार्ज और 3 अन्य ऑफिसर्स को लाइन ड्यूटी पर भेज दिया है। लाइन ड्यूटी का मतलब होता है कि उनको वहां से तबादला करके जो पुलिस लाइंस होती हैं वहां भेज दिया जाता है और हादसे की सूचना न लिखने के लिए उन्हें ये सजा दी गई। फैक्ट्री के आसपास 50 मीटर के दायरे में 5 से 7 मकानों का भी नुकसान हुआ है, ऐसा कहा गया है। विस्फोटों की आवाज कथित तौर पर 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। आसपास के लोगों ने घायलों को फैक्ट्री से निकालने में मदद की आग लगने के बाद। और हम केवल यहाँ आपकी फरमाइश पेश करते हैं, जो भी आप फरमाइश करते हैं, जैसे कि यह सुधा की पसंद है और यह है किशोर कुमार जी की मधुर आवाज़ और ये गाना दिल ढूंढता है फिल्म मौसम से है। 02-9816-2777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में। माफ़ कीजिए, ये वो गाना नहीं है। और जो गाना आपको सुनाना चाहता हूँ वो है फिल्म मौसम का ये बेहतरीन गाना दिल ढूंढता है। और इस गाने से पहले गुलजार साहब भी इस गाने के बारे में कुछ कहना कह रहे हैं और हमें बता रहे हैं।
1: गालिब का है और कैफियत हर एक की अपनी अपनी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है, एक हरकत करती हुई।

और अब जो अगला गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ गुलजार साहब का, वो वही गाना है जो गलती से बज गया था, और वो गाना है फिल्म बहुत ही एक प्यारी फिल्म थी, वहीद रहमान जी थी उसमें, राजेश खन्ना जी थे उसमें, और साथ में धर्मेंद्र जी भी थे, और इस प्यारी फिल्म का ये गाना ही मशहूर नहीं हुआ, वो शाम कुछ अजीब थी और खामोशी फिल्म का ये गाना, लेकिन खामोशी फिल्म का एक और गाना था तुम पुकार लो, वो भी बहुत ही अत्यंत ही मशहूर हुआ था, और साथ में ही मशहूर हुआ था उनका लिखा हुआ हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, लेकिन आज जो है शांति की पसंद पर हम फिल्म खामोशी का ये गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमें आप संपर्क कर सकते हैं अपनी फरमाइश हम तक भेजने के लिए 02981622777 पे, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है महक महक, और उसके आप सदस्य बन सकते हैं यहाँ स्टूडियो में फोन करके 02981622777 पे, और हमें ईमेल भी भेज सकते हैं आप mahakradio@yahoo.com mahakradio@yahoo.com, और कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हम बहुत आभारी हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम कार्यक्रम उनके सपोर्ट से पेश कर सकते हैं आपके लिए।

लता जी ने दो फिल्में बनाई, एक थी लेकिन एक थी रुदाली, और दोनों फिल्मों में गाने ऐसे थे जो अत्यंत ही मशहूर हुए। फिल्म रुदाली में दिल हुम हुम करे और फिल्म लेकिन में यारा सीली सीली अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था, और इसमें आवाज़ भी लता मंगेशकर जी की ही थी। और लता मंगेशकर जी ने क्या गाना गाया था ये यारा सीली सीली। और आज तक जब भी किसी क्लासिकल गाने संगीत के गाने की बात होती है तो बात होती है यारा सीली सीली।

सन 1947 में आग और लहू से लिपटी एक लकीर हिंदुस्तान की छाती से गुजरी, रूह और जिस्म को बांटती चली गई। एक टीस उठी, एक दुहाई दी अमृता जी ने, और बस वही पंजाबी अदब में उनकी पहचान बन के रह गई। आज आखां वारस शाह ना।

0: इश्क दा कोई अगला वरका फूल। अज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फूल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण। वे दर्दमंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशा विछिया ते लौदी भरी चराब।
1: उन्नीस सौ सैंतालीस में देश के बंटवारे पर लिखी अमृता प्रीतम जी की ये कविता अमर हो गई, और अमर हो गई अमृता प्रीतम जी। महिलाओं की आवाज बनी अमृता प्रीतम जी, और आज उनकी आवाज बन रहे हैं गुलजार जी उनकी इस कविता को अपनी आवाज देकर। उनको उनका जन्म हुआ गुजरांवाला पंजाब में जो अब पाकिस्तान में है। नाम अमृत कौर, 11 साल की थी जब उनकी माँ गुजर गई। घर की जिम्मेवारियां और अकेलेपन में छोटी सी उम्र में उन्होंने लुकना शुरू कर दिया। 1936 में 16 साल की कच्ची उम्र में अमृत लहरा नाम से कविताओं की एक किताब छापी उन्होंने। इसी वर्ष शादी भी की उन्होंने, शादी की प्रीतम सिंह से, और अपना नाम बदल कर रखा अमृता प्रीतम। बंगाल के 1943 के अकाल से बहुत प्रभावित हुई वो, और किताब लिखी, कविता लिखी लोक पीड़। 1947 में देश के बंटवारे के दर्द, हिंदू सिखों के दंगे, 10 लाख लोगों की मृत्यु, और अपने आप में को भी रिफ्यूजी पाकर शायद अपनी सबसे यादगार रचना लिखी उन्होंने, रची आज आखां वारिस शाह नूं, जिसके कुछ अंश अभी आपने गुलजार साहब की आवाज़ में सुने। 1961 तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में पंजाबी सर्विस में काम किया। 1960 में तलाक के बाद महिलाओं के समर्थन में लिखना शुरू किया। उनके काम को अंग्रेजी, फ्रेंच, डेनिश, जापानीज, मैंडरिन और कई अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। उनकी रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। धरती सागर ते सिपियां नाम की किताब पर 1965 में कादंबरी नाम की फिल्म बनी। 1976 में उना दी कहानी किताब पर फिल्म बनी डाकू। उनकी किताब पिंजर पर इसी नाम से चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई। 33 सालों तक नागमणि नाम की पंजाबी मैगजीन की एडिटर रही अमृता प्रीतम जी। जीवन की पक्की उम्र में आत्मिक रचनाओं की रचना की। नाम काल चेतना, अज्ञान दा निमंत्रण, अपनी जीवन कहानी भी लिखी काला गुलाब, रसीदी टिकट और अक्षरों के साए में। साहिर लुधियानवी जी के साथ अमृता प्रीतम जी का कथित प्लेटोनिक लव काफ़ी जो है चर्चा में रहा। रसीदी टिकट में इसके बारे में भी उन्होंने, अमृता प्रीतम जी ने लिखा है। 2007 में गुलजार साहब ने उनकी कविताओं को अपनी आवाज़ दी, अमृता गुलजार की जुबानी। और अभी जो उनकी आवाज़ गुलजार साहब की आपने सुनी, इनकी कविता को कहते हुए, वो इसी संग्रह से है। गूगल ने अमृता जी के सम्मान में उनके 100वें जन्मदिन पर डूडल छापा। आप जानते ही होंगे गूगल एक डूडल करता है, जो कि एक तरह की ड्राइंग होती है और कुछ उसमें लिखा भी होता है। तो उन्होंने उस डूडल में लिखा, टुडेज डूडल सेलिब्रेट्स अमृता प्रीतम, वन ऑफ हिस्ट्रीज फॉरमोस्ट पंजाबी फीमेल राइटर्स हु डेयर्ड टू लिव द लाइफ शी इमेजिन्स, बॉर्न इन गुजरांवाला ब्रिटिश इंडिया 100 ईयर्स अगो टुडे। प्रीतम पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्स एट द एज ऑफ 16। ये थी कुछ बातें अमृता प्रीतम जी उनके लेखन के बारे में। और अब आइए चलते हैं वापस गुलजार साहब की आवाज़ में उनके मैं आँखां वारिस शाह नूं कविता की ओर
0: तेउना पानियां तरत नूं दित्ता पानी ला इस जरखे जमीन दे लूं लूं फुटिया जहर गिट गिट चढ़िया लालियां फुट फुट चढ़िया गैर अज आँखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल वेहू वलीसी वां फिर वन वन वगी जा उन्हें हर एक वांस दी वंजनी दित्ती नाग बना पहला डंग मदारियां मंत्र गए गवाच दूजे डंग दी लग गई जने खने नु लाग लागा कीले लोक मूं बस फेर डंग ही डंग पलो पले पंजाब दे नीले पै गए अंग अज आखां वाल शानू कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबी इश्क दा कोई अगला वर्का खोल गलियों टुटे गीत फिर त्रकलियों टुटी तंद त्रिंजनियों टुटियां सेलियां चरखले कूकर बंद सने सेज दे बेड़ियां लुडन दितियां रोड सने डालियां पींग अज पिपलां दित्ती तोड़ अज आखां वारस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल
1: बहुत ही अच्छे ढंग से अमृता प्रीतम जी की ये कविता आज आखां वारस शाह नूं गुलजार जी ने गाकर एक तरह से भूल कर सुनाई आइए चलें गुलजार साहब के ही गीतों की ओर गुलजार साहब ने यूं तो लिटररी और फिलोसॉफिकल गाने बहुत लिखे और बहुत मशहूर भी हुए जिनमें से कुछ अभी आपने महक 2RRR 88.5 FM पर सुने ऐसा नहीं कि उन्होंने हल्के फुल्के गाने नहीं लिखे हल्के फुल्के गाने भी लिखे उन्होंने अमोल पालेकर जी की फिल्म आई थी गोलमाल और वो सीरीज तो अभी तक चल रही है लेकिन अमोल पालेकर जी की गोलमाल कुछ अलग ही थी और उसमें उन्होंने गाना लिखा था गोलमाल है भाई सब गोलमाल है

बीबीसी हिंदी में समाचार आया 2 सितंबर को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु पानी संधि को निलंबित कर दिया, जिस नतीजा भारत से पाकिस्तान को पानी जाना बंद हो गया। पाकिस्तान ने द हेग, जो कि यूरोप का एक शहर है, द हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस दायर कर दिया। भारत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सदस्य है। कोर्ट ने फैसला सुनाया इस बीते सप्ताह कि भारत को इस पूरी तरह से प्रभावी संधि का पालन करना होगा, अपने दायित्वों का पालन करना होगा। भारत ने फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, इस कथित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भारत के संप्रभु यानी सॉवरन फैसलों पर निर्णय सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे पास अधिकार है आपकी फरमाइश सुनाने का। और एक और ऐसा ही गाना है हल्का फुल्का, और ये है फिल्म किताब से, जो 1977 में आई थी, और गुलजार साहब ने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा था, हल्के फुल्का धन्नों की आंखों में, और बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था।

0: 2 सितंबर दैनिक ट्रिब्यून में समाचार आया कि 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर खारिज किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केवल गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वालों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दी। प्रदर्शन में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा देने के आदेश भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार को इस बारे में पूरे देश के लिए एक नीति बनाने के लिए भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जनसत्ता समाचार पत्र में समाचार आया 5 सितंबर को जस्टिस उज्जवल भुइयां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से जनता सुरक्षा और मदद के लिए नजर उठाती है, देखती है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करना परेशान करने वाला आचरण है, यह गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस जरूरत से अधिक बल का इस्तेमाल किए बिना या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना प्रभावी ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रख सकती है। यह बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, और हम केवल इतना कहते हैं कि अब समय है संदेशों का।
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Are you a RIDE resident living with a disability and interested in working?
4: Empower RIDE is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
3: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumeta Room at RIDE Library at 1 Pope Street, RIDE.
4: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower RIDE, please visit the City of RIDE website.
5: Plug into the heart of your community at the 2RRR website. Dive into our news section for fresh local voices on everything from local news and politics to the latest buzz. Explore the program guide and discover shows for every taste. Visit 2RRR.org.au today.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। अगला गाना गुलजार जी का लिखा हुआ एक फरमाइशी गाना है, और फरमाइश की है राज ने, और ये गाना है हम सफ़र मेरे हम सफ़र, फिल्म है पूर्णिमा।

जनसत्ता समाचार पत्र 3 सितंबर का है ये समाचार। दिल्ली में एक बार फिर चलती बस में रेप का केस सामने आया है। 4 अगस्त को मैनपुरी से आई 17 वर्ष की लड़की ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतरी। वहां से वो नोएडा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। जोरों की बारिश पड़ रही थी। एक स्लीपर बस आकर उसके पास रुकी। बस कंडक्टर ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ जाने चाहती है, तो लड़की ने कहा नोएडा। बस कंडक्टर ने कहा कि बस उधर ही जा रही है। लड़की बस में चढ़ गई। जब अंदर गई तो देखा बस खाली है, तो उसने उतरने की कोशिश की और कंडक्टर ने ज़बरदस्ती उसे रोका। और फिर बारी बारी से कंडक्टर और ड्राइवर ने उसका रेप किया। 47 किलोमीटर दूर कश्मीरी गेट पर लड़की को बस से उतार दिया गया, जहां उसने पुलिस में शिकायत लिखवाई। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ये जो होता है ये बहुत गलत होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें और हमारी बहुएं हमारे जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितने के हमारे बेटे, भाई और पुरुष सदस्य। एक बेटी और बहू साइंटिस्ट बन सकती है, मैथमेटिशियन बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, टीचर बन सकती है, जो चाहे बन सकती है। तो फिर क्यों हम उनको अलग नज़र से देखते हैं? जीवन की जो ऊंचाई छूना चाहें वो छू सकती हैं, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए इस कार्य में। और एक समाचार आया है अमेरिका से। अमेरिका के H-1B वीज़ा लेने पर $1,00,000 की फीस की खबर आपको सुनाई थी मैंने, और ये खबर अभी ठंडी ही नहीं हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब नई परेशानी खड़ी कर दी है उनके लिए, जो पहले ही H-1B वीज़ा पर अमेरिका में हैं। जो लोग दूसरे देशों में जन्म लेते हैं और उनके अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को बर्थ राइट सिटीजनशिप अब तक मिलता रहा है, उससे वंचित रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए ये एक नई परेशानी खड़ी हो गई है, लेकिन हमारे कार्यक्रम पर फरमाइश की कोई परेशानी नहीं होती है। तो गुलजार साहब ने, आप कहेंगे पुरानी जनरेशन के लिए 60s, 70s, 50s वगैरह वगैरह के लिए खूब गीत लिखे हैं, नई जनरेशन के लिए तो सुनिए उन्होंने नई जनरेशन के लिए क्या धूम धड़ाके वाले और क्या पॉपुलर गीत लिखे हैं। फिल्म है दिल से

और बीबीसी हिंदी में समाचार आया 6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में शनिवार के दिन 5 सितंबर को बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। 15 अगस्त को लाल किले से कुछ बौखलाए लोग जो थे उनको मैंने होम्योपैथी की गोली दी थी और उन्हें बताया था दिमागी नक्सल। जैसे ही मैंने गोली दी सारे दिमागी नक्सल बाहर आने लगे, मगर जनता उनका असली रंग देख रही है। उन्होंने अपने काम में सरदार यानी नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन UPI जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐप है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर विरोध करने वालों को नाराज फूफा बताया। और कांग्रेस नेता ने इस बात के बारे में, पवन खेड़ा ने भाषण के बारे में कहा, ऐसा बोरिंग भाषण के प्याज भी रो पड़े। आदिवासी SRCC ग्रेजुएट योगेश मीना इस कार्यक्रम में नहीं है, क्यों था? क्योंकि उसे नोएडा मजदूर प्रदर्शन के मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। मेरा विचार इस सब के बारे में यह है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार किसी भी तरह का विरोध नहीं चाहते हैं और ना ही उसे विरोध को बर्दाश्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी हर बात, आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं और ख़ास तौर से आपकी फरमाइशें। और ये भी कहना चाहूँगा इस बारे में कि बजाय उठाए गए सवाल पर जवाब दें, वो उन्होंने और उनके साथियों ने ये फैशन ही बना दिया है कि सवाल उठाने वाले पर आरोप लगाए जाएं, जिससे वो सवाल का जवाब देने से बच जाते हैं। फिल्म ओंकारा, जिसके लिए गुलजार साहब ने ये गीत लिखा, और ये मॉडर्न जनरेशन के लिए

रुकी है कथित तौर पर LIC से लिए गए लोन्स में धोखाधड़ी के बारे में। अपनी संपत्ति की कीमत सुभाष चंद्रा ने कथित तौर पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज लोन लिए। लेकिन इस सब का नतीजा क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। और खेल की दुनिया से जनसत्ता समाचार पत्र में आया कि वुमेन्स एशिया कप 2026 इंडिया पाकिस्तान थाईलैंड हांगकांग चाइना इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है और श्रीलंका बांग्लादेश इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है। UAE भी है इसमें। भारत 6 पॉइंट्स लेकर ग्रुप ए में सबसे ऊपर है, श्रीलंका ग्रुप बी में ऊपर है लेकिन अभी उसको एक मैच खेलना है। और फिल्मी दुनिया के समाचारों में समाचार आए हैं कि फिल्म हनुमान अंश के बड़े चर्चे हो रहे हैं। नीम करोली बाबा पर आधारित है ये फिल्म। फिल्म के हनुमान भजन अत्यंत ही पॉपुलर हो रहे हैं। ये भजन एक न्यूयॉर्क में जन्मे जेफरी केगल ने गाए हैं और हनुमान अंश जो हैं वो जैसा मैंने बताया नीम करोली बाबा पर आधारित है। और नीम करोली बाबा के संपर्क में आने के बाद जेफरी केगल ने अपना नाम बदल कर रख लिया कृष्ण दास। रॉक ब्लूज और जैज जैसे गीत गाने वाले जेफरी केगल बन गए हनुमान चालीसा और भजन गाने वाले कृष्ण दास। अब कीर्तन ही उनके संगीत का आधार है। और कारगिल की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स के रोल पर बनी है फिल्म ऑपरेशन सफेद सागर। नेटफ्लिक्स पर चल रही है और इसे देखने के बाद क्रिकेटर और IAF के ऑनररी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने याद किया वो समय जब वो एयर मार्शल BS धनोआ से मिले थे और कहा कि ऑपरेशन सफेद सागर याद दिलाती है इंडियन एयरफोर्स की कारगिल में भागीदारी जिसके कारण हम सब चैन की नींद सो सकते हैं। और 18 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म वाइब और कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा हैं इस फिल्म में। कहानी है दो दोस्तों की जो आम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन उनकी आम जिंदगी बन जाती है देश बचाओ की मुहिम और वो देश बचाने में लग जाते हैं। ये है एक एक्शन कॉमेडी फिल्म। और फिल्म मिर्जापुर जो इसी सप्ताह लगी है उसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अखंडानंद त्रिपाठी के किरदार को सही तरीके से एक तरह से पर्दे पर जिया है। कहानी मिर्जापुर की गद्दी और उसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में है। फिल्म के अनेकों चरित्र ऐसे हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बड़े पर्दे के लिए ही बनी है ये फिल्म और इसे आप देखना चाहें तो बड़े पर्दे पर ही देखें। और अगला गाना जो है उसकी भी एक छोटी सी आपको झलक मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये यशराज जी की बहुत ही प्यारी फिल्म उनकी अंतिम फिल्म थी ये और फिल्म थी जब तक है जान। और इसे ये भी एक फरमाइशी गाना है और इसके बोल हैं सांस। AR रहमान साहब ने संगीत दिया और गुलजार साहब ने इसको लिखा है।

अगले साल 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आईसीसी वुमेन्स चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी और भारत में खेली जाएगी। मुंबई और वडोदरा में होने वाले टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और भारत खेलेंगे। और विमेंस एशिया कप 2026 में जो आजकल हो रहा है, कल शनिवार 5 सितंबर को भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलकर एक नया कीर्तिमान कायम कर दिया है। कप्तान के तौर पर 150 मैच खेलने का कीर्तिमान। पुरुष और महिला क्रिकेट में वो इकलौते कैप्टन हैं, पहली क्रिकेटर हैं ये कीर्तिमान जो है स्थापित करने के लिए। और बातें कुछ हमारी कर्म भूमि की। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉक्सर टोनी मंडीन की 75 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वो न्यू साउथ वेल्स के बैरियल गिल शहर से थे और बॉक्सिंग के लिए सिडनी में रहने लगे थे। रिटायरमेंट के बाद टोनी मंडीन ने सिडनी के रेडफर्न में द ब्लॉक नाम के जगह पर केंद्र बनाया अपने काम के लिए, जिसमें वो एबोरिजिनीज के लिए काम और शिक्षा शामिल करके अपनी सेवा देते थे। क्लासिक स्टेज बैले सिंड्रेला वापस आ रहा है। आपको मालूम होगा सिंड्रेला एक बैले है और 2027 में एडिलेड सिंफनी ऑर्केस्ट्रा के साथ सिंड्रेला का प्रीमियर होगा। ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने तय किया है कि भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर लगाए जाएंगे वो शहरों और रिहायशी जगहों से दूर लगाए जाएंगे, यानी रीजनल एरियाज में लगाए जाएंगे। इन डाटा सेंटर्स को ग्रीन एनर्जी पैदा करने का भी आदेश होगा, वो अपनी ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। सिडनी हार्बर ब्रिज के दक्षिण की तरफ वॉल्श बे में एक नया फेरी स्टॉप बनाया जा रहा है और इससे उन लोगों को आसानी होगी जो वॉल्श बे के कला केंद्रों का आनंद लेना चाहते हैं। स्किन कैंसर या मेलानोमा जो ऑस्ट्रेलियंस के लिए बड़ा खतरा है, बीच कल्चर मजबूरी में धूप में ज्यादा वक्त गुजारने के कारण। प्रोफेसर जॉर्जिना लॉन्ग ने मेलानोमा वैक्सीन खोज करके मेलानोमा के इलाज और होने से रोकने में बड़ा कदम रखा है और उन्होंने यूरेका प्राइस साइंटिफिक रिसर्च को भी जीता है, उनको उससे भी नवाजा गया है। और एक और गाना है गुलजार साहब का नई पीढ़ी के लिए, जिसका छोटा सा अंश तो ज़रूर आपको सुनाऊंगा क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों ही थे और उनकी बहू कौन है बहू आप जानते ही हैं।

फिल्म है बंटी और बबली, और ऐश्वर्या राय उनकी बहू तीनों थे इस गाने में, लेकिन बहुत छोटा सा अंश सुना पाऊंगा।

अगले सप्ताह जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं अक्षय कुमार, अनुराग कश्यप जी, आशा भोसले जी, राकेश रोशन, भूपेन हजारिका और यश जौहर जी, जिनकी फिल्म का भी आपने गाना सुना जब तक है जान। और मशहूर लोगों में विनोबा भावे जी, विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता गोविंद वल्लभ पंत जी, लाला अमरनाथ जी, बहुत मशहूर क्रिकेटर। और गुलजार साहब के गानों का कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने गजल्स भी लिखी, जगजीत सिंह जी ने उनको गाया भी, मरासिम कोई बात चले। और अप्रैल 2013 में चांसलर बने असम यूनिवर्सिटी के। और अभिनेत्री राखी से उन्होंने शादी की, बेटी है उनकी मेघना। और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए गए 2004 में, पद्म भूषण से 2004 में, 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते उन्होंने गीतकार के लिए, 4 बेस्ट डायलॉग के लिए, और ऑस्कर जीता उन्होंने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए, और ग्रैमी अवार्ड भी जीता इसके लिए। और 2013 में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब मुझे सुखदेव जसवाल को आज्ञा दीजिए और अंत में छोड़े जा रहा हूँ उनका ऑस्कर विनिंग गाना स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए एआर रहमान जी के संगीत में, जय हो। और अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।